पेश खदमत है मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बूंदों के रथ पर चांदी सी चमक लिए आपके पसंदीदा गीत आपके शहर से हमारे पास तक आ चुके हैं। साथियों, ये पत्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। थकान तो इनमें कहीं दिखती नहीं, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके प्यारे प्यारे खतों की खुशबू है। मन चाहे गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

पत्थर के सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मिश्र सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से सदानंद, अभयानंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर

बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश, सोनी गोविंदा, सोनी उत्तम सोनी और मिलावदास जयदास देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतन बाई मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इद्रीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश, श्यामला, अश्विन और आनंद मनविथ दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के, का ये पत्र है। प्रकाश शील के, तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के, शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनताद अकोले से, राजेश, प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

0: तिवारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत पोरा अहिवारा। जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भारा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं। सचिन नीलखन, आयुष पीयूष, आराध्या, सारिका, मधुकर राउत, ये हमारे रंगनाथ देवल गांव के श्रोता हैं। मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: अब अगर हम स...

ये खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की, साहिल ढानवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश, शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा। और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे। हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसा बेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे। और इसी गीत को सुनना चाहा सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और मुश्तबा खान, सादिक भाई और शाहिद ने।

मेरा साया फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहदीली खां के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने और फरमाइश भेजी आप सभी ने। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले की ये फरमाइश है और शाहिद दीपक और ऋषि की फरमाइश आई है सूरत उन गांव से। गांधी चौक बाड़मेर के हमारे श्रोता बबलेश डैनी और मनीष पवार और नई सड़क एमपी शाजापुर के हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश भेजी है। मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि चित्रंजन, सरोज, रितिका स्वीटी, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओ कार्यक्रम में अपने पत्र भेजने के लिए। भेजते हैं इसी तरह से अपने पत्र और हम भी सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और अब इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
1: अरे भाई कृपण चंद, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार? अरे जल्दी आओ ना।
2: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
1: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
2: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
1: क्यों?
2: तुम तो जानते हो भाई मेरी इकलौती पत्नी स्वर्ग सिधार गई है।
1: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
2: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता टूट कर रहा हूँ।
1: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
2: मजाक ना करो दोस्त, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह खुला रहा है। हाय हाय हाय हाय, कितना चाहती तुम मुझे।
1: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
2: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
1: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
2: अरे न जाने क्या हुआ, हरदम उदास रहती है। कोई कोई सी आय आय आय आय, चांद सा गोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
1: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
2: नहीं तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती।
1: अरे
2: भाई उतार चल।
1: हाँ
2: उतार चल।
1: हाँ कृपण चल,
2: तुम मेरे दोस्त ही नहीं सगे भाई की तरह हो।
1: सो तो
2: बोलो ना।
1: हाँ
2: तुम ऐसा करो, तुम ही कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूँ।
1: देखो भाई कृपण चल, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
2: बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी।
1: बताओ
2: बताओ
1: बताओ
2: अब बताओ। अरे वाह।
1: देखो भाई तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां दिलवा दो।
2: जरी के काम

0: साड़ियाँ।
1: अरे इतना ही नहीं, साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
0: साड़ियाँ और जेवर? नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा उसका है।
1: महंगा?
0: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदाहरण कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: ओ, ओ, तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई, तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
0: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई,
1: हाँ?
0: साड़ी जेवर पर कमाई,
1: हाँ?
0: समझो उसकी आफत आई।
1: हाँ? तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
0: क्या मतलब?
1: अरे भाई, जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
0: तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
0: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? बोलो भाई, है तो गारंटी नहीं? अरे भाई, तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
1: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
0: एक ही बार तो की थी।
1: हाँ, एक ही बार की थी। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो। उदास?
1: हाँ,
0: कोई आज मुस्कुरा सकता
1: नहीं? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता। बेटी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं चला, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
0: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
1: अच्छा?
0: वो रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
1: ठीक है, मैं दुलारी को भिजवा देता
0: हूँ। दीदी को भेजना जरूर।
1: हाँ, भेज दूंगा।
0: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी, जेवर, शादी, आय आय आय आय आय आय, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आय आय आय।
2: चाचा जी,
0: आ, दिलारी तुम आ गई।
2: क्या बात है, मुझे बताइए। चाचा जी, मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
0: अरे वाह, शादी नहीं बर्बादी है। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
2: लेकिन चाचा जी,
0: उसने इसलिए पढ़ा दिया।
2: चाचा जी,
0: चुप रहो।
2: रूपा किसी को चाहती
0: है? क्या किसी का नाम है जी?
2: उसे पति चाहिए।
0: मैं कुछ नहीं जानता।
2: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए, उसकी शादी कर दीजिए। रूपा, देखा दुलारे, चिंता की कोई बात नहीं। रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर दे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारे, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद के आगे तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चले।
0: प्यार हो गया, शादी करेंगे। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा कर दूं? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है। मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
2: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
0: क्या हुआ मेरी बेटी को?
2: बदकिस्मती।
0: अरे तुम्हारी बोलो तो कुछ।
2: दुर्भाग्य।
0: अरे बताती तूने क्या हुआ?
2: रूपा बहन,
0: क्या हुआ उसे?
2: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
0: अच्छा, तो
2: पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती।
0: अरे,
2: मेरे लिए अब एक ही रास्ता है।
0: क्या, क्या?
2: मौत।
0: और वो नीचे कूद गई?
2: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
0: क्यों, क्यों?
2: चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
0: गई। मूर्छित हो गई? मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ।
2: जल्दी जाइए,
0: तब तक रूपा को देख लेना। मैं अभी
2: डॉक्टर। रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
3: डॉक्टर?
2: हाँ,
3: अब क्या होगा? डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
2: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना

0: होगा। अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा, जान।
1: आइए आइए आइए, बड़ी मुश्किल।
0: चाचा जी आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। बेटी क्या बात है?
0: चाचा जी रूपा, पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है।
2: मैं डॉक्टर बोगसचंद।
1: हाँ हाँ बोगसचंद, बिल्कुल बोगस।
2: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
3: और मैं हूँ कविराज मूढ़ानंद, नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता
4: है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, हकीम अहमद सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहू तो मुर्दे में जान डाल लू और चाहू तो जिंदा को।
1: अरे भाई मैंने कहा अपने मुमिया मिट्टू बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
2: क्या तकलीफ है आपको?
3: मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है।
4: अरे मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे कम समय।
1: सावधान के मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
3: नॉनसेंस, हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता सकते।
4: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई, मरीजा कहाँ है?
1: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
0: जाइए।
1: वो आ गया। क्या हाल है मेरी बेटी का?
2: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
1: गुड वेरी गुड।
2: बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
1: क्या मतलब हो जी? पापा मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
3: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
4: हमने इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगसचंद?
2: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठवीदा।
3: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
1: अच्छा,
3: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
1: अच्छा ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। बेटी को देख लो।
2: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
3: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
4: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
2: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
3: अरे क्यों मिथ्या खतन करते हो, जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते हैं।
2: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
3: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
4: अरे भाई
3: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं।
4: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाई जान। हाथ में शफा होनी चाहिए शफा, मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
3: अच्छा,
4: अब धोबी चंगा हो गया।
2: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
3: आप लोग फिर लड़ने लगे।
1: आप लोगों ने क्या किया?
3: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बच कर नहीं जा सकता।
1: तो जल्दी कोई इलाज बताइए,
3: बता। आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
2: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सेठ जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
3: और अपनी भी तो कहस सेठ जी, डॉक्टर बोगसचंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
4: हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं।

0: दोनों ही जहीर और ठग हैं।
1: हाँ बिल्कुल ठीक।
0: अरे खानदानी हकीम का जनाब सिर मैं हूँ, खानदानी हकीम जी। हाँ ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सौंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्ज काफूर हो जाएगा।
1: मगर हकीम साहब, मैं नहीं, मेरी बेटी है ना।
2: तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया।
1: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
2: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को देखने जाते
1: हैं। सुनिए सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। अब मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस,
2: और तशरीफ ले जाइए के लिए दवा।
0: अल्लाह हुल भी जाइए,
1: उन्होंने को भी जाइए, खत्म आ जाइए, चल जाओ। पाला पड़ा
3: चाचा जी, क्या बताया उन लोगों ने?
1: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
3: मैं तो पहले कह रही थी,
1: लगता है मेरी रूपा को मर्द कोई दूर कर नहीं पाएगा।
3: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
1: बेटी तू क्या चलाएगी?
3: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
1: अरे तो जाना, जा मेरा मुंह क्या ताक रही है, जाकर जल्दी से बुला ला। और बेटी फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में।
3: हाँ मैं सब पक्का कर लूंगी।
1: हाँ समझ
3: आ, अभी गई और अभी आई।
1: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी आया आया। रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गएगा। अरे अरे न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
4: अरे भाई कमाल चाल, डॉक्टर बोगस सर ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
1: हाँ भाई बेहोश पड़ी है।
4: अरे भाई डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
1: क्या करूं बताओ, बताओ तुम्हें बताओ ना।
4: उसके कान में धीरे से कहो, बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ, बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
1: अपनी बकवास बंद करो। मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
4: अरे भाई मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? मैं तो
1: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं? बोलो करते हो नहीं?
4: हाँ, तो हूँ।
1: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
4: हाँ, बोलो।
1: मेरा नाम भी कृपण चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
4: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
4: ठीक है, अब मुझे क्या?
1: हाँ हाँ जाओ जाओ, दूर कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है। देखो
3: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
2: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना?
3: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइयां हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
2: मेरी एक्टिंग देखकर तुम दंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो।
3: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें।
2: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करती हूं।
1: अरे बेटी दुलारी दुलारी रूपा की हालत
3: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
1: अरे ये डॉक्टर है
3: क्यों?
1: एकदम छोकरा
2: श्रीमान जी।
1: ये क्या इलाज करेगा?
2: आप मुझे मामूली डॉक्टर ना समझें।
1: अच्छा?
2: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
1: ये क्या बला है जी?
2: ना मैं सुई लगाता हूँ। अच्छा? और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
1: हूँ। कैसे इलाज करते हो जी तुम?
2: जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ।
1: अच्छा
2: जी हाँ।
3: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है, जादू।
1: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब चल कर।
2: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
3: मगर वो तो बेहोश है।
2: जी हाँ है नहीं,

0: देखी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है। जाकर मरीजा को ले आओ।
1: अभी लाई, अभी लाई।
2: कमाल है, वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
0: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही
2: है। मगर डॉक्टर साहब
0: जी,
2: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया, कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल देख से चल नहीं पाती।
0: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
1: लीजिए, मरीज़ आ गई।
0: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं मेरे सामने ही बातें करूँ।
1: चाचा जी, ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
2: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
0: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
2: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
1: अच्छा चाचा जी, आइए हम लोग उस कोने में चले, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
2: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
3: मैं आ गया।
1: मेरी प्राण
2: दुलारी,
1: मेरी आंखें,
2: डॉक्टर क्या बोल रहा है?
1: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
2: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
1: तो क्या हुआ चाचा जी, रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना?
2: डॉक्टर साहब
0: जी,
2: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
0: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
2: अच्छा अच्छा,
0: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा?
2: पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा को अंदर ले जा।
0: देखिए, दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
2: अच्छा
0: जी हाँ, अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
2: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
0: जी हाँ, मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का भूत
2: है।
0: मैं गलत कह रहा हूँ?
1: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
2: बिल्कुल
0: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
2: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुआ रहा हूँ।
1: तब फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
2: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
0: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
2: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
0: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
2: अरे अच्छा,
0: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
2: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दें?
0: जी नहीं, जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
2: फिर क्या करें, बताइए।
0: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
2: नाटक?
0: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
2: आपका मतलब है कि
0: हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
2: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
1: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
2: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
0: हाँ, ये समस्या।
2: वही वही ना बात।
1: डॉक्टर साहब जी, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
0: वो कैसे?
1: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
2: हो तो सकता है, लेकिन
1: लेकिन बेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए, रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
0: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
1: डॉक्टर साहब
0: जी,
1: आप कृपा करके हमारी विनती मानिए, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं भी रूपा को लाती
2: हूँ। बचाइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, जैसे भी हो बचा लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
0: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं।
2: गुड गुड।
0: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
2: सही सही, बिल्कुल सही।
0: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
1: रूपा आ गई चाचा जी।
2: बहुत अच्छा।

0: थी नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
1: क्या ये सच है पिताजी?
0: हाँ, पसंद है।
1: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
0: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
1: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
0: अरे सुन तो दुलारी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है नाटक।
1: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
0: अच्छा ठीक है, जाओ। बेटी बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं होना?
1: नहीं, लेकिन
0: बेटी ला तो अपना हाथ ऐसे। हाँ, और भाई तुम भी अपना हाथ।
2: लेकिन वो
0: नाटक अच्छा जा रहा है, चलवाती दो। ला बेटी हाथ दो। हाँ जी लो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
1: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह। अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
0: ये तो ठीक है।
3: जजमान मैं कराऊंगा ब्याह।
0: लेकिन पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो है जजमान है। कहाँ है ये संसार जो है, ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता हैं। तो जजमान वर वधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
0: जी हाँ बिल्कुल।
3: तब ठीक है। तो बच्चा लोग अब तुम जरा इसके आसपास में फेरे लगा लो जी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरी। समझ लो यजमान, भावरे भी पड़ गई है। सदाशिव भाग्यवती रहो। हाँ यजमान। अब सुनिए यजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है, और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
0: पंडित जी, मेरी बात तो।
1: चाचा जी, आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए।
0: पक्का होना चाहिए, बिल्कुल। मैं आशीर्वाद देता हूँ।
3: बोली
0: ये जोड़ी जुग जुग जी।
4: यानी कि चट मंगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी। मैं अभी जाकर साड़ियां और जेवर।
0: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम।
3: अच्छा जजमान,
0: बोले
3: तो अब हमारी दक्षिणा तुमने जाए जो है जो।
0: कैसी दक्षिणा? शादी तो
1: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी, पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
3: एकदम पक्की शादी कराई है, कम से कम सवा 5 रुपए तो दीजिए।
0: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए। और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटा।
3: अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान, मैं जाता हूँ।
5: अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलो रूपा।
1: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
0: ये क्या मजाक है? देखा तुमने, देखा कल की छोकरी हमें बना रही है।
4: अरे इसमें बनाने की क्या बात है? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दिया है किरमन चंद, तो उसे विदा भी कर दो।
0: कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उदासन तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं समझते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
4: इलाज नाटक भाई, ये सब क्या चक्कर है? यानी कि
5: अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕೀಕೃತ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ.
1: ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಅ ಟಾಕ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೈ ಅಂಕಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈಲಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರಿ ಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है. तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का. और ऐसा तो नहीं है. तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है. और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं. तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है. पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं. और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं. सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं. तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है. इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है. जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है. और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए. तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे, और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, ये सोचना भी जरूरी है. सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ,

0: उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.daily-law.in ಯಾ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ 14454 ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೈ.
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry ki scheme hai, ye Mahila Evam Bal Vikas Mantralaya ke antargat aati hai aur iske overall India mein 700 se 800 centers run kar rahe hain. Delhi mein hi 11 centers hain aur ye जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं. सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है. कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है. हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा. वो बहुत ज़्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो, अब अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं. मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ. सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं. साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं. ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में, और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं. सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है. उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी. और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है. मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े. उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है. वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर. वो वहां पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है, तो उसको बहुत इजी प्रोसेस

0: मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं। उसके द्वारा वहां पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या है, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में है या फिर हमारे जो लोकल एनजीओस वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं। वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल जाती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं, पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है, पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस, मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा केस सीट पे, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: ಇದುವರೆಗೆ ಗಾಹಕೀಕೃತ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿಬಂತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದವರು ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ.